0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष

0: बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী শিলিগুড়ি অনুষ্ঠান শুনছেন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ 711 কিলোহার্টজ প্রচার তরঙ্গে এবং নিউজ অন AIR মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। এখন শুনুন অমৃত বাণী। মহান ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের রচনার থেকে, কিছুতেই ভয় পাইও না, তোমরা বিস্ময়কর কার্য করিবে। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন। ভয়ই সমুদয় দুঃখের মূল কারণ, ভয়ই সর্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার। নির্ভীক হইলে মুহূর্ত মধ্যেই স্বর্গ আমাদের করতলগত হয়। মহান ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দের রচনা থেকে উদ্ধৃত অংশটি শুনলেন। এখন শুনুন ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান বন্দনা, শিল্পী সাধনা সরগম।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ोरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर

0: में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
7: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
2: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
4: धन्यवाद।
2: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं के श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
4: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है,

0: हम देखते तो हैं
1: जी,
0: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
0: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
0: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
0: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
0: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
0: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक
1: जी,
0: है
1: जी।
0: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
0: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन लें, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
0: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
0: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
0: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
0: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
0: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे, लेकिन हाँ जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे, तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम विशेष रूप से आपसे

0: जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
1: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
0: जी,
1: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
0: जी,
1: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है, या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
0: जी।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
0: जी।
1: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
0: जी।
1: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
0: जी।
1: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
0: जी।
1: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
0: जी।
1: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
0: जी।
1: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
0: जी।
1: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
0: जी।
1: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
0: जी।
1: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
0: जी।
1: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
0: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी।
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी।
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी,
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।
1: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
0: जी।
1: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
0: जी।
1: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
0: जी।
1: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में मौखिक भाषा में बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
0: जी।
1: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
0: जी
1: ठीक है लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ उत्तरी भारत में
0: बिल्कुल
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
0: जी
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
0: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
0: जी।
1: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
0: जी।
1: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
0: जी।
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
0: जी।
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा एक विषय एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
0: जी।
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
0: जी
1: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
0: जी
1: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
0: जी
1: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
0: जी।
1: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
0: जी।
1: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो टेक्टाइल पाथ क्या आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
0: जी जी
1: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें
0: बिल्कुल
1: पीली टाइलें कैसी हैं उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
0: जी
1: उनके उभारों को महसूस
0: बिल्कुल
1: कर सकते हैं मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं
0: जी
1: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है कहाँ इकट्ठा होना है हमें
0: जी।
1: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं
0: जी।
1: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना जिसको हम कहते हैं प्रशस्त प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
0: जी,
1: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
0: जी।
1: तो ये भी एक हमारी पहल है
0: जी। प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
1: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप सीआईईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
0: जी।
1: और एक और सरल उपाय है
0: जी,
1: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है, गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईईटी एनसीईआरटी, आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहां से ले सकते हैं
0: जी।
1: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
0: जी।
1: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से, एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं
0: जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
1: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
0: जी,
1: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
0: जी।
1: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
0: जी,
1: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
0: जी।
1: तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
0: जी।
1: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है
0: जी। बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चों को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी
0: जी,
1: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
0: जी।
1: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
0: जी।
1: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
0: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: languages and dialects while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
5: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधान मंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल

0: सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: আকাশবাণী শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনছেন। একটু পরেই আকাশবাণীর নেপালি অনুষ্ঠান।

0: सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानले भन्नुभएको छ, गरीब कल्याणको 12 वर्षको अवधि पूरा

0: ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
1: थैंक यू खान साहब, नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी फॉर अ लाइव कमेंट्री ऑफ द प्रेस्टीजियस एंड मोस्ट ऑनर्ड डिफेंस एंबेसडर सेरेमनी 2026।
0: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
1: एंड द गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन पैक्ड टू इट्स कैपेसिटी, वी've जस्ट वेलकम्ड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। The audience is rising and now taking their seats, and as we were mentioning that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into the national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassador Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honour our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all. Given their supreme sacrifice, and there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the land.
0: भारत के माननीय रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन भारत के गणतंत्र मंडप में किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
1: The audiences, as we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance,

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to raksha alankaran samaro aarambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karikram aarambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karikram ka vidhivat.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख छत्तीसगढ़ पुलिस
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने
3: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया अभियान में अनेक नक्सली मारे गए यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट
2: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं
3: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख
2: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तालियों के साथ
3: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट
0: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट
3: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाए अभियान के दौरान भारी गोलीबारी ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया साथियों पर घातक फायर कर रहे तीसरे आतंकी का भी खात्मा किया निर्भीक रण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला
0: A brisk, quick walk up to the Honorable President, that is Lieutenant Colonel Nitesh Bharati Shukla, proudly receiving the Medal of Honor Shaurya Chakra for his bravery, courage, and indomitable spirit. And now,
3: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal, the Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
2: Major Aditya Pratap Singh ko.
3: मेजर आदित्य प्रताप सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वॉन्टेड उग्रवादी को मार गिराया अदम्य साहस राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है मेजर आदित्य प्रताप सिंह
2: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की परिकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति
3: मेजर आशीष कुमार द पैराशूट रेजिमेंट
0: Major Ashish Kumar from the 7th Battalion of the Parachute Regiment, briskly boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
3: 2 नवंबर 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की. भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था. असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है, मेजर आशीष कुमार.
0: Major Ashish Kumar from the Para Regiment, donning the red beret, walking past towards our Honorable President, and proudly the medal Shaurya Chakra being pinned on his proud chest. A soldier lives for this day.
3: Sipahi GD Sanjay Tiwari, Sipahi GD Fida Hussain Dar, Kendriya Reserve Police Force.
2: CRPF ke GD Sanjay Tiwari aur GD Fida Hussain Dar ko शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है.
3: 2 नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली. बिना समय गवाए सिपाही जीडी संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया. गोलीबारी शुरू हुई. आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे. बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया. गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सिपाही जीडी संजय तिवारी.
2: सिपाही जीडी संजय तिवारी को, जो कि सीआरपीएफ से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
3: सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार.
2: और अब अदम्य साहस के लिए सीआरपीएफ के सिपाही जीडी फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति.
4: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक, 26 असम राइफल्स.
0: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रिस्क.
4: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया. अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया. उस समय डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की. अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक
0: वॉकिंग ब्रिस्कली, कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र.
4: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
4: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई. जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांप कर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया. परिणाम स्वरूप अपने सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया. सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है. लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर.
2: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है.
4: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल.
0: And now Seaman Ram Goyal.
4: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल।
0: वॉकिंग कॉन्फिडेंटली ब्रिस्कली, दिस इज लीडिंग सीमैन राम गोपाल टू रिसीव हिज मेडल ऑफ करेज, मेडल ऑफ गैलेंट्री, शौर्य चक्र। सैल्यूटिंग एंड हेडिंग
4: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन, CRPF।
2: और अब CRPF के सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इस वक्त सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
4: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन।
2: सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तृतीय बटालियन CRPF के द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
4: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन CRPF।
0: एंड नाउ वॉकिंग टुवर्ड्स आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन फ्रॉम द 20 बटालियन CRPF। अ क्विक टर्न एंड अ सैल्यूट।
4: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन।
0: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
3: राइफलमैन भोजराम साहू, तीसरी बटालियन असम राइफल्स।
2: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
3: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद।

0: किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन भोजराम साहू।
1: तालियों की गड़गड़ाहट के बाद राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट, briskly walking forward, taking a quick brisk turn, a salute to Honorable President, Supreme Commander of the Forces.
0: 21 November 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
2: ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, अ राउंड ऑफ क्लैप्स गोइंग अप इन द एयर, रिसीविंग हिज प्राउड गैलेंट्री अवार्ड, द शौर्य चक्र फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड कोरेज।
0: मेजर भार्गव कलिता, कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स।
1: कुमाऊं रेजिमेंट 50वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर भार्गव कलिता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ 3 सफल ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए एवं 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को द्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर भार्गव कलिता।
2: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉन्टिंग करेज एंड ब्रावाडो।
0: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
1: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
0: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
1: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
0: मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 32वीं बटालियन Assam Rifles.
2: And now coming marching forward, Major Anshul Baltu from the Jammu and Kashmir Light Infantry.
0: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद तीन सशस्त्र आतंकियों के शव एवं तीन AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है, मेजर अंशुल पलटू।
2: The गणतंत्र मंडप echoing away the loud round of applause for Major Anshul Baltu receiving his Shaurya Chakra, a proud moment for the soldier. Saluting our honorable president and a quick turn
0: Major
2: back to the
0: Shivkant
2: arena.
0: Major Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
1: अब Parachute Regiment के Major Shivkant Yadav को Shaurya Chakra।
0: Major Shivkant Yadav ने एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में दो अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर शिवकांत यादव।
1: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य और अदम्य साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शौर्य चक्र।
0: सुबेदार PH मोसेस 1 असम राइफल्स।
2: And now, Subedar P.H. Moses from the 1st Assam Rifles, proudly marching, slow measured march, a quick salute.
0: 14 May 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, सुबेदार PH मोसेस।
2: सुबेदार PH मोसेस, a proud soldier of the Defence Forces of Maa Bharati, our motherland India. Receiving his pride medal of honor, saluting and heading back.
0: Major Vivek, the mechanized infantry 42 Rashtriya Rifles.
1: Mechanized infantry 42 Rashtriya Rifles ke Major Vivek ko Shaurya Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
0: 15 May 2025 ko Pulwama zile mein ghera aur talashi abhiyan ke dauran Major Vivek ki tukdi aatankwadiyon ki golibari ki chapet mein aa gaya. Aapne आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराया। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, मेजर विवेक।
1: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स।
2: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई फ्रॉम द 3rd असम राइफल्स। रेडी टू रिसीव।
0: 9 जून 2025 को राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में दो आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई।
2: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई बीइंग अवार्डेड द शौर्य चक्र, डिस्प्लेइंग नर्व्स ऑफ स्टील।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाट गए आदित्य श्री कुमार पैराशूट।

0: रेजिमेंट।
1: 21 पैरा विशेष दल के लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्रीकुमार को शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्रीकुमार ने सीमावर्ती इलाके में एक किले बंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्रीकुमार।
1: उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाट के आदित्य श्रीकुमार और ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
2: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
3: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
2: Jammu even Kashmir ke ilake mein Captain Yogendra Singh Thakur apne nigrani daste ke saath tainat the, jab unhe lagbhag 300 meter ki duri par kuch agyat vyaktiyon ki harkat dikhai thi. Sangdit vyaktiyon ke bhagne aur anapekshit nuksanon se bachane ke liye ve ghane kohre mein atal rahe. अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। इस स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर
3: for his unprecedented valor, fighting spirit, dedication, Captain Yogendra Singh Thakur is awarded the Shaurya Chakra. And now a salute in turn.
2: Subedar Shamsher Singh, Parachute Regiment.
1: Aur char para vishesh dal ke Subedar Shamsher Singh इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
2: सुबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने के गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सुबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार शमशेर सिंह,
1: कर्तव्य के प्रति समर्पण और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए सुबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
2: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट।
3: And now, Lance Nayak,
2: श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह,
3: नायक राहुल सिंह मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज करेज अंडर फायर, अ फाइन डिस्प्ले ऑफ व्हाट आवर सोल्जर्स वाउ टू प्लेज।
2: राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता, 33 असम राइफल्स।
1: 33 असम राइफल्स के राइफलमैन दुर्बा ज्योति दत्ता विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए
2: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धुब्रा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बांह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धुबरा ज्योति दत्ता
1: रक्षा केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
2: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
3: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilna K and Lieutenant Commander Rupai.
2: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय प्रशांत अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की जिसमें आपको एकांत अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
3: A big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
2: Lieutenant Commander Rupa A.
3: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
0: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र। कल को
1: वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष।
0: कल कुशांत लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कर्नल कोशांक लांबा।
1: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
0: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू उड़ान पायलट।
3: एंड आवर सेकंड वीर चक्र ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू The flying captain from the Indian Air Force.
0: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए 3 स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
3: Group Captain Ranjit Singh Sidhu marching forward to receive his medal short Veer Chakra from our Honorable President.
4: कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र उड़ान पायलट।
1: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
4: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र।
1: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को
4: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी उड़ान पायलट
3: एंड नाउ Group Captain Animesh Patni, dressed in impeccable blue uniform, coming forward.
4: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
3: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र एंड एज दे से डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल and Ganatantra Mandap echoing
4: Kalra Udan pilot
3: with applause.
1: Aur ab group captain Kudan Kalra ko aamantrit kiya gaya hai jo ki Udan pilot hai.
4: Aapne ek khatarnak sainya abhiyan ke antargat dushman ke do mahatvapurn thikano ko tabah karne ke liye unescorted strike package ke mission leader ke roop mein udan bhari. Shatru dwara zameen aur aasman se nirantar kiye ja rahe pran ghatak hamlon, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
1: असाधारण साहस शौर्य कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
4: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा उड़ान पायलट।
3: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
4: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
3: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज destroying the designated enemy target, receiving his Veer Chakra.
0: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, 1988 Swatantra Medium Battery.
1: Lieutenant Colonel Sushil Bisht, अब वीर चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के साथ।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजीशन व पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
1: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच असाधारण बहादुरी, अधिक नेतृत्व और अतुलनीय साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
0: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार, उड़ान पायलट।
3: स्क्वाड्रन लीडर नाउ विंग कमांडर सार्थक कुमार फ्लाइंग पायलट, proudly marching forward, a quick turn and salute to our supreme commander.
0: Squad leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai va uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safaltapurvak sampann kiya और शत्रु की महत्वपूर्ण हवाई संरचना को नष्ट करने में अत्यधिक मदद की। असाधारण साहस एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, विंग कमांडर सार्थक कुमार।
3: विंग कमांडर सार्थक कुमार फॉर प्लेइंग अ पिवोटल रोल इन द हाई स्टेक लॉन्ग रेंज ऑफ स्ट्राइक मिशन विद एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड हीरोइज्म receiving his Veer Chakra.
0: Squadron leader Siddhant Singh, Udaan pilot.
1: Udaan pilot, squadron leader Siddhant Singh ko Veer Chakra ke liye aamantrit kiya gaya hai.
0: Squadron leader Siddhant Singh ne ek atyant jokhimpurn vayu mission mein shatru ki majboot air defense pranali ko bhedte hue kam uchai par radar se bachte hue pravesh kar lakshya par prabhavi hamla kiya और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह।
1: असाधारण साहस और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, उड़ान पायलट।
3: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स नाउ रेडी टू रिसीव हिज अवार्ड वीर चक्र।
0: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ऑपरेशन के दौरान मध्य रात्रि में एक अनस्कॉटेड स्ट्राइक पैकेज के डिप्टी मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। लक्ष्य नवीनतम शक्तिशाली वायु रक्षा शस्त्र प्रणाली से सुसज्जित था। विरोधी एयर स्पेस में निर्बाध रडार कवर के बावजूद खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल, विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक।
3: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक, एकोज ऑफ जुबिलेशन इन द हॉल, अ प्राउड मोमेंट फॉर स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक रिसीविंग हिज वीर चक्र।
0: फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर, उड़ान पायलट।
1: माननीय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त अपने सैनिकों की शौर्य गाथा सुनते हुए।
0: फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
1: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र प्राप्त हुए।
0: नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th बटालियन द डोगरा रेजिमेंट।
3: And now, Naib Subedar Satish Kumar from the 4th Battalion Dogra Regiment, proudly marching forward.
0: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोर्टर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोर्टर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार।
3: Hands going up in a round of applause for Naib Subedar Satish Kumar from the Dogra Regiment and our Honorable President pinning the Veer Chakra Medal of Gallantry on the proud chest of Satish Kumar.
2: Shatru ka mukabla karne ke sivai asadharan veerta ke liye Kirti Chakra. Lance Nayak Minachi Sundaram A, Topkhana Regiment, 34 Rashtriya Rifles.
1: 29 Shauri Chakra, 15
2: लांसनायक मीनाक्षी सुंदरम ए कुलगाम के एक ऑपरेशन में आंतरिक घेराबंदी का हिस्सा थे। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांसनायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए।
1: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम को।
2: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
3: नर्व्स ऑफ स्टील आवर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
2: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा ने 2 आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी के जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा।
3: And a round of applause from our Honorable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
2: Major Ashdeep Singh, Kavachit Corps, 1 Assam Rifles.
1: And now, agla Kirti Chakra.
2: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
1: आदित्य वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
3: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
2: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
3: The proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
2: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
1: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
2: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नजदीकी मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
1: तालियों की कड़कड़ाहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो को
4: शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणो।
5: आकाशवाणी शिलीगुड़ी अनुष्ठान सुनसान मीडियम वेव 711 किलोहर्ट्ज प्रचार तरंगे एवं न्यूज ऑन एआईआर অ্যাপের মাধ্যমে। এখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের দু একটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সিকিমেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে কোনো কোনো জায়গায়। শুনলেন আবহাওয়ার খবর। এবার জানিয়ে দিই আকাশবাণী শিলিগুড়ির 711 কিলোহার্টজ প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী কিছু অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে। সন্ধ্যে 6:05 পদ্মশ্রী মহেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার, 6:40 ভাওয়াইয়া শিল্পী জ্যোৎস্না বর্মন রায়। রাত 8:00 শুনবেন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পঞ্চম স্থানাধিকারী স্বর্ণাভ খাটুয়ার সাক্ষাৎকার। জানিয়ে দেওয়া হলো আকাশবাণী শিলিগুড়ির পরবর্তী কিছু অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে। এখন বিশেষ অনুষ্ঠান শুনবেন পদ্মশ্রী মহেন্দ্রনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন অতনু চৌধুরী।
6: নমস্কার। আজ আমাদের মধ্যে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন

0: সদরহাট এবং তিস্তা নদী যে বাঁধ আছে, যেটা বাঁধের পাশে সেখানে আমার গ্রাম। এবার আমি একজন খুব সাধারণ কৃষকের ছেলে এবং আমি বলি যে আমার যখন 3 বছর বয়স তখন আমার বাবা মারা যান। আমার মা, বিধবা মা, আমার এক ছোট বোন, মানে একদম ছোট ছিল তখন, এক দিদি আর মিডিল আমি, এই 4 জনকে নিয়ে আমাদের সংসার। এবার আমাদের জমি জমা খুব সামান্য ছিল, মানে 5-7 বিঘা জমি ছিল আর কি, কিন্তু সেটা দেখবে কে? মানে আসলে মা তো ঘরের কাজেই করে, কৃষিকাজ তো করতে পারে না, ফলে এই জমিটুকু মানে দেখবে এটা কে? মানে একটু লেবার দিদি মা আমাদের চাষ করি, তাহলে আমরা খাবো কি? খুবই কঠিন অবস্থা। তখন আমার মায়ের ইচ্ছে ছিল যে তুমি কৃষিকাজ করো, পড়াশোনা না করে কৃষিকাজ দাও, মন দাও, তাতে কৃষিকাজ করে চলবে। এবার এটাও মা বললো যে আমি তখন প্রাইমারি স্কুলে, পাশে আমার একটা প্রাইমারি স্কুল বক্সিগঞ্জ প্রাইমারি স্কুল, সেখানে জাস্ট নাম টাম লেখানো বা এইসব কিছু শেখানোর জন্য আমাকে অ্যাডমিশন নিতে হলো, নিলাম আমি। এবার মা তখন ভাবছিল যে এই
1: জব শহীদ সৈনিকো কে পরিজন রাষ্ট্রপতি কে হাতো সম্মান গ্রহণ করতে হ্যায় অর পুরা রাষ্ট্র উনকে বলিদান কো নমন করতা হ্যায়।
2: রাইফলম্যান সুনীল কুমার, 4th Battalion জম্মু আর কাশ্মীর লাইট ইনফ্যান্ট্রি, মরণোপরাত।
3: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
2: rifleman Sunil Kumar
3: and joy.
2: Seema Suraksha Bal ki 7th Battalion ke saath सेना के समन्वय टुकड़ी के रूप में जम्मू क्षेत्र के एक सीमा चौकी पर तैनात थे। 7 मई 2025 सीमापार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
3: To the next of kin, the parents of rifleman Sunil Kumar, awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family, saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
2: Ab Kirti Chakra Marano Parant Pradan Kiye Jayenge. सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट 1st Battalion राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
1: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
2: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
1: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही

0: बाल प्रवीण प्रभाकर की पत्नी थी। बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए, गले लगाते हुए उनकी वादा को, बहुत ही भावुक होते हुए
1: A tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr.
2: Lieutenant Shashank Tiwari, Sena Seva Kur, First Sikkim Scouts, Maranoparant.
1: And now, the next of kin of Lieutenant Shashank Tiwari, posthumously, from the Army Service Corps, coming forward to receive the honor in the form of Kirti Chakra for their beloved. Greeting
2: Lieutenant Shashank Tiwari ne 22 mai 2025 ko
1: the family
2: Uttar Sikkim ke durgam pahadi ilake mein chalaye gaye ek operational gasht ka swechha se netritv sambhala. Gasht ke dauran unka ek agnivir Stephen Subba santulat bigadne se nadi mein ja gira. अपने साथी को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला, लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
1: The mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
0: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति, सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ, सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की।
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

0: लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इन्स्पेक्टर लक्ष्मण केवट र रामेश दुर्गा देशमुखलाई शौर्य चक्रले सम्मानित गरियो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति श्री पी राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र अन्य केन्द्रीय मन्त्री तथा सशस्त्र बलका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित रहेका छन्। नयाँ दिल्लीमा आज बसेको इण्डिया ब्लकको बैठकमा विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूले भाग लिए। यसमा कंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे, वरिष्ठ कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कंग्रेस अध्यक्ष ममता ब्यानर्जी, नेशनल कन्फरेन्सका वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला र राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले सामेल थिए। आम आदमी पार्टी र डीएमके पार्टी सहित केही विपक्षी दल भने बैठकबाट अलग रहे। श्री खड्गेले बैठकपछि संवाददातालाई बैठकमा 25 वटा राजनीतिक दलहरूले भाग लिएको बताउँदै भन्नुभयो, विभिन्न मुद्दामाथि चर्चा हुनका साथै सबैले आफ्ना विचार साझा गरे। श्री खड्गेले भन्नुभयो,
1: सबैले 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: कंग्रेस अध्यक्षले भन्नुभयो, इण्डिया ब्लकका सबै दलको प्रत्येक 2 महिनामा बैठक गर्नमाथि सहमति भयो अनि आगामी बैठक अगस्तमा निर्धारित छ र यो बैठक तेलंगानाको हैदराबादमा हुनेछ। अर्कातिर भारतीय जनता पार्टीले बैठकमाथि प्रतिक्रिया दिँदै इण्डिया ब्लकको जनता बीच विश्वसनीयता कम भएको दावी गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता सम्बित पात्राले नयाँ दिल्लीमा संवाददाताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, जनताले पहिलै विपक्षी गठबन्धनलाई अप्रभावी बनाइसकेका छन् अनि अब उनीहरू यस्ता बैठकको माध्यमबाट आफ्नो प्रासंगिकता पुनप्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना लागू गर्ने देशका 36 राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा सामेल भएको छ। यस योजना अन्तर्गत पात्र लाभार्थीहरूलाई माध्यमिक र तृतीय स्तरका अस्पतालमा भर्ना हुनका लागि प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपियाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यमा योजनाको कार्यान्वयनका लागि आज नयाँ दिल्लीमा एउटा सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गर्यो। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जेपी नड्डा र पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको उपस्थितिमा सम्झौता ज्ञापनमा हस्ताक्षर गरियो। पश्चिम बंगालमा आयुष्मान भारत योजनाको कार्यान्वयनबाट राज्यका लाखौं पात्र लाभार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै खर्चबाट वित्तीय सुरक्षा मिल्नेछ। यसबाट गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच बढ़नका साथै राज्यको स्वास्थ्य सेवा तन्त्रलाई पनि मजबूती मिल्नेछ। यसबारे बोल्दै मुख्यमन्त्री श्री अधिकारीले भन्नुभयो,
2: एनएचएम के अन्दर यस साल पश्चिम बंगाल सरकारको पूरा मदत गर्ने के लिए भारत सरकार आगे आया और 527 करोड उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1 करोड़ 43 लाख फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले आज आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पसिनयानलाई संसदीय चुनावमा उहाँको सिभिल कन्ट्रेक्ट पार्टीको जीतमा बधाई दिनुभयो। प्रधानमन्त्री श्री मोदीले सोशल मीडिया सन्देशमा भन्नुभएको छ, यो जीत आर्मेनियालाई जनताद्वारा आफ्ना नेता श्री निकोल पसिनयान र उहाँको विचारमाथि भरोसा र विश्वासलाई दर्शाउँदछ। प्रधानमन्त्रीले आफू भारत र आर्मेनिया बीच मित्रता र सहयोगको ऐतिहासिक तथा दरिलो सम्बन्धलाई अझ अघि बढ़ाउन प्रधानमन्त्री श्री पसिनयानसित मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले भनेको छ, पश्चिम एशिया संघर्ष हुँदाहुँदै पनि देशमा काँचो तेल, एलपीजी र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रूपमा सामान्य रहेको छ। नयाँ दिल्लीमा आज अन्तर मन्त्रालय प्रेस वार्तामा मन्त्रालयका अपर सचिव प्रवीण खन्नोजाले भन्नुभयो,
3: Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas remain stable and we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. The domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels.
0: रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालयकी अपर सचिव अर्पणा शर्माले भन्नुभयो, देशमा उर्वरकको भण्डार पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ। सुश्री शर्माले भन्नुभयो, यस वर्ष खरीफ सिजनका लागि कृषि तथा किसान कल्याण विभागले 380 लाख मेट्रिक टन भन्दा अधिक उर्वरकको आवश्यकताको अनुमान लगाएको छ। अहिलेसम्ममा किसानले लगभग 86 लाख मेट्रिक टन उर्वरक किनिसकेका छन्। केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलले आज देशभरि 100 औद्योगिक पार्कको विकासमा गति ल्याउन भव्य पोर्टलको शुभारम्भ गर्नुभयो। श्री गोयलले नयाँ दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो, यो पोर्टलले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। उहाँले भन्नुभयो, यस अन्तर्गत सुगम सड़क, रेल र अन्य परिवहन सुविधा, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकका लागि सुविधा र पर्यावरण अनुकूल विकासमाथि ध्यान दिइनेछ। केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले यस योजनालाई 33,660 करोड़ रूपियाँको बजेटका साथ स्वीकृति दिएको छ। भव्य योजना अन्तर्गत आगामी 6 वर्षमा देशमा 100 विश्वस्तरीय तथा निवेशका लागि तयार औद्योगिक पार्क विकसित गरिनेछ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज चण्डीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभामा कमनवेल्थ संसदीय संगठन भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभयो। 3 दिवसीय सम्मेलनमा देशभरिका विधानसभा अध्यक्ष तथा विभिन्न राज्यका विधानसभा प्रतिनिधिले महत्वपूर्ण विषयमाथि चर्चा गर्नेछन्। यसमा विकसित भारत 2047 को निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को उपयोग र लोकतान्त्रिक संस्थानलाई अधिक प्रभावी बनाउने जस्ता विषय समावेश छन्। सम्मेलनमा राज्यसभा उपसभापति हरिवंश पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यसबाहेक 13 जना विधानसभा अध्यक्ष, 4 जना उपाध्यक्ष र 7 जना सचिवले भाग लिइरहेछन्। यस कार्यक्रममा सिक्किम, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल सहित 12 वटा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका प्रतिनिधि सामेल भएका छन्। दिल्लीका उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सन्धु र मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले आज दिल्लीका अन्य मन्त्रीहरूको साथमा दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विषयमा समीक्षा बैठक गर्नुभयो। बैठकमा अवैध भवन विरूद्ध चलिरहेको अभियान, अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी लाइसेन्सको दुरूपयोग र भविष्यको तयारीको व्यापक समीक्षा गरियो। बैठक अवधि दिल्लीको आपदा सम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्नमाथि जोड़ दिइयो। बैठकमा अग्निशमन विभागको कार्यबललाई दरिलो बनाउन, विद्यमान रिक्ततालाई भर्ना, पूरा अग्निवीरहरूको भर्तीमाथि विचार गर्ने सुझाव दिइयो। यसका साथै गत सप्ताह गठित अधिकारीहरूको टोलीलाई समयमा कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट एटीआर प्रस्तुत गर्ने निर्देश दिइएको छ। बैठकमा गर्मीसित सम्बन्धित आपदा प्रबन्धन उपाय र मनसूनको तयारीको स्थितिको पनि समीक्षा गरियो। आगामी वर्षको मौसममा बाढ़ीको अवस्थामा अतिरिक्त सावधानी, सख्त कार्यान्वयन र शून्य सहिष्णुताको दृष्टिकोण अप्नाउन आह्वान गरिएको छ। आकाशवाणीको आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरा भएको छ। वर्ष 1936 आजकै दिन इण्डिया सेटेलाइट ब्रोडकास्टिङ सर्भिसलाई अल इण्डिया रेडियो नाम दिइएको थियो। यो दिवस देशको सांस्कृतिक, सूचना र प्रसारण इतिहासमा एउटा विशेष अवसरका रूपमा अंकित छ, जसबाट पीढ़ीहरूसम्म राष्ट्रको चेतनासित जोड़िने वाणीको अभ्युदय भयो।
4: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ সশস্ত্র বাহিনী, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত পুলিশ কর্মীদের শৌর্য পুরস্কার প্রদান করেছেন। সারা দেশে 100টি শিল্প পার্কের উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ ভাবিয়া পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন বাণিজ্য শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। দেশের মধ্যে 36তম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা চালু হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে সংঘাতের ঘটনায় ভারত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ফিলিপিন্সের দক্ষিণে আজ সকালে 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পে কমপক্ষে 32 জন প্রাণ হারিয়েছেন, আহত 200-র বেশি। ভারত একমাত্র টেস্টে আফগানিস্তানকে 1 ইনিংসে 300 রানে হারিয়ে দিয়েছে। আসি বিস্তারিত খবরে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ সশস্ত্র সেনা, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত পুলিশ কর্মীদের শৌর্য পুরস্কার প্রদান করেছেন। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে এই সম্মান প্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সুরজ পারাসার, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নীতিশ ভারতী শুক্লা, মেজর আদিত্য প্রতাপ সিং, ইন্সপেক্টর লক্ষণ কেওয়াত এবং রামেশ্বর দুর্গা দেশমুখকে শৌর্যচক্রে সম্মানিত করা হয়েছে। মরণোত্তর কীর্তিচক্র সম্মান পেয়েছেন শহীদ লেফটেন্যান্ট শশাঙ্ক তিওয়ারি এবং সিপাহী প্রবীণ প্রভাকর। বীরচক্র প্রদান করা হয় কর্নেল কোসাঙ্ক লাম্বাকে। মরণোত্তর বীরচক্রে সম্মানিত করা হয়েছে রাইফেলম্যান সুনীল কুমার, সাব ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ ইমতিয়াজ ও কনস্টেবল দীপক চিঙ্গাখামকে। উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দেশের 100টি শিল্প পার্কের উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আজ ভাবিয়া পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। নতুন দিল্লিতে এই সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে শ্রী গোয়েল বলেন, মাল্টিমোডাল যোগাযোগ, বিশ্বাসযোগ্য ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনা, ডিজিটাল প্রশাসনিক কার্যকারিতা, শ্রমিক অনুকূল পরিবেশ এবং সুসংহত উন্নয়ন সহ একাধিক নিবিড় শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলাই এই পোর্টালের অন্যতম লক্ষ্য। এই উদ্যোগ দেশের উৎপাদন পরিমণ্ডলকে আরও শক্তিশালী করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
5: To develop the industrial ecosystem and promote large-scale job creation through greater investments across the length and breadth of India, we have launched the Bhavya scheme. Bhavya will set up 100 industrial parks of different sizes. This time we are also going to be looking at earmarking more area for startups, deep tech or technology-oriented businesses, R&D and innovation-oriented businesses.
4: প্রকল্পের সুবিধার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ভাবিয়ার অধীনে শিল্প পার্কগুলিকে আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা এবং শিল্পের চাহিদা মতো গড়ে তোলা হবে। উল্লেখ্য, 6 বছরে 100টি বিশ্বমানের শিল্প পার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি ভাবিয়ার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 33,660 কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের সফল 10 বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জেপি নাড্ডা আগামীকাল দেশব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন। দেশের সমস্ত গর্ভবতী মহিলাকে বিনামূল্যে নিশ্চিত, উন্নত এবং সুসংহত প্রসব পূর্ববর্তী সেবা পৌঁছে দিতে 2016 সালের 9 জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অভিযানের সূচনা করেছিলেন। আগামীকালের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী 75 টাকার একটি বিশেষ স্মারক মুদ্রা এবং 5 টাকার ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন। দেশের মধ্যে 36তম রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনা চালু হয়েছে। এর অধীনে যোগ্য উপভোক্তারা প্রতি বছর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পরিবার পিছু 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে পরিষেবা পাবেন। নতুন দিল্লিতে আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে এ ব্যাপারে সমঝোতা স্মারকপত্র মৌ স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে শ্রী নাড্ডা বলেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প হল আয়ুষ্মান ভারত। দিন ধরে রাজ্যবাসীকে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করায় বিগত তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।
6: मैं डबल इंजन की सरकार की दृष्टि से आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर को हम पैसा देना चाहते थे। हमने कई बार सुवेंदु जी को कहा कि आप ही ममता जी को समझाओ, भाई हमारा लोगो तो लगाओ, आयुष्मान का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तो लगाओ, आशा वर्कर तो बैठाओ, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। अब फिर से मैं कहूंगा नहीं, लेकिन हो बे ना, यही उन्होंने कहा। आज देखिए अंतर क्या आया, मई महीने में सरकार बनी और आपको 527 करोड़ रुपए नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमने पहला किस्त आपको रिलीज कर दिया।
4: অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে কেন্দ্র রাজ্য সরকারকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তা করবে। বাংলার বাইরে থাকলেও রাজ্যবাসী এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।
2: NHM के अंदर इस साल पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार आगे आया और 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
4: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। শুধুমাত্র রাজ্যসভার সদস্য পদ নয়, দলের প্রাথমিক সদস্য পদও ছাড়ছেন তিনি। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 15 বছরের শাসনকালে বিভিন্ন ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তিনি দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, নারী নির্যাতন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। নতুন দিল্লিতে আজ বিকেলে INDIA জোটের বৈঠক বসে। বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতানেত্রীরা বৈঠকে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে, দলের নেতা রাহুল গান্ধী, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী মমতা ব্যানার্জি, ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রবীণ নেতা ওমর আবদুল্লাহ, NCP SP নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে সহ অন্যরা। যদিও আম আদমি পার্টি এবং দ্রাবিড় মুন্নেত্র

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत

0: बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे newzonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
7: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
5: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
8: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।